साधना नमस्कारा जाके मन लागा ब्रह्म मीठा सर्व सुखता हु मन उठा जे जने अपना हुक्म नाया सर्व दोख नानक तिन पाया अगंत सा अपनी दे राज खाद पीत बरते अनंत उलास अपनी मान कछु बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी प्रति से आगे राखे प्रभु की आज्ञा मानै माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पाद माया के हेत सर पर होत जान नेत बिरख की छाया सो रंग लावै ओ बिन से ओ मन पुछतावै जो दिसे सो चालन हार लपट रहे होता अंध अंधार बटाऊ से जो लावे ने ताको आद नावे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आव ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या में ममता माया मिथ्या राजोन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रसि अशुभस्तरा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अवमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान अस्थिर भगत साध की शरणा नानक जप जप जीवे हर के चरणा मिथ्या सन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर भुकारा मिथ्या बास ले भिकारा बिन भुजे मिथ्या सब पय सफल दे नानक हर हर नाम लय मृति साख की आर जा साज बिना कह हो तो सूचा मिर्था नाम बिना तन अंध मुख आवता के दुर्गंध बिन सिमरन दिन रहन बिरसा बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन के निरार धाम तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंढ लावत जानन हार प्रभु प्रवीण बार पेक न गाहू पीन अवर उपदेश आप ना करै आवत जावत जन मै मरै जिसके अंतर बसे निंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम पाने थे।

मन माए। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिस गोसन परम गद पावे। जे प्रसाद पसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना और पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ते आइए त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंधावे तिसे त्या कर अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर दा का जस गावी जय। जे प्रसाद तू सबको मन मुखता को जस रसन बखाने। जय प्रसाद तेरा रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जब दरगाह महान पावे नानक पर सेती कर जाव है। जय प्रसाद रो कंचन दे लिवलावो तिस राम सने। जय प्रसाद तेरा उल्ला रहे मन सुख पावे हर हर जस कह। जय प्रसाद तेरे सगल सिदर ठाके मन धरनी प्रभु ठाकर प्रभु ताका। जय प्रसाद तुझका ना पहुँचे मन साध साध सिमरो प्रभु उचै। जय प्रसाद पज दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे। जय प्रसाद भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वाल सकी जय। जय प्रसाद अस्त सवारी मन तिस प्रभु को कभु ना बिसारी। जय प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना। जिन देरी मन बंत बनाई उठ बह सत तिसे ते आई। तिसे ते आए जो एक लख यहाँ नानक तेरी रख। जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करनाथ जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख से जे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद सुपूर्ण फल। जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सहज संभाव। ऐसा प्रभु त्याग अवर गत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तुता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तां से राज। जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हो प्रगाश प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मन उत्तम होए। सवन दान प्रभु तेरी मैया आपू कछु न किन्हू लया। जित जित लाभ ते त लगे हर नाथ नानक इनके कछु न हाथ। श्लोक गम गाद पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध के संग मुख उज्जल हो साध संग मल सगली गोत। साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगट सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा। साध के संग पाए नाम रतन साध के संग कुपर जतन। साध की महिमा भरने कौन परानी नानक साध की सोपा प्रमय समानी। साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुल। साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पूंचा। साध संग हो सबकी रेन साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कदूं तावे साध संग अस्तित्व मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीर साधु के संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर साध के संग न भींगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा सत्संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप साध के संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कभू तावे साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस्त अगोचर लहे साधु के संग जर सहे। साध के संग बसे तने उचे साधु के संग मैल पहुँचै। साध के संग दड़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पै नाम निदान नानक साधु के कुरबान। साध के संग सब

सारे सत्संग साजन मीत कुटम निस्तार है, साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावै। सत्संग धर्म राय कर सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, सत्संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जनम। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध के संग कलू गुधारे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथ जावे। पार ब्रह्म साध रिस बसे, नानक उदरे साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरे, साध संग सर पर निस्तर है। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कर कर डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुन तेता बखियाने। साध की उम्मा ते गुण ते दूर, साध की उम्मा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊजते ऊंची, साध की शोभा मूझते मूची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक किस बिन कोए। नानक ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख। जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान। जैसे राज रंग को लागे तुल भवान, ब्रह्म ज्ञानी के तीर जेक। ज्यों बसदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एक गुनाओ। नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे महल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश। जैसे तरयु परे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान। ब्रह्म ज्ञानी के नए अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊचते ऊंचा। मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पै। नानक जिन प्रभ आप करै, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर मया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

जियो, जो तिस पावा सोई फुन थियो। कबहू ऊच नीच मैं बसा, कबहू सो घर खरंग हसा, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू उबह कास पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू निरत करै बहु पांत, कबहू सोय रह दिन रात, कबहू महा क्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो त्रवाल, कबहू हुए बह बड़ राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवा, कबहू पला पला कहावा, जो प्रभ राखा तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कहा। कबहू हुए पंडित करे बख्यान, कबहू मोन तारी लाभ ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अणक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावा, जो प्रभ पावा तिव नचावा, जो तिस पावा सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू सात संगत हो पावा, उस अस्थान ते बौर ना आवा, अंतर हुए ज्ञान परगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसा पार ब्रह्म कह संग, जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ का सतगुरबान। श्लोक सुखी बसा मसकीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जानना मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को कर्म बंत कहावा, जन्म मरै बहु जोन परम हवा, तन पूमका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावा, नानक इहां मुक्ता गए सुख पावा, तनवंता हुए कर गरबावा, तृण समान कै संग न जावा, बहु लश्कर वानकूपर करयास, पल पीतर ताका हुए विनास, सब ते आप जानै बलवंत, खिन मैं हुए जाए पसमंत, किसना बदा आप अहंकारी, धर्म राय तिस करे खुआरी, गुर प्रसाद जाका मिटै अभिमान, सो जन नानक दरगा परवान, कोट कर्म करै हों तारे, श्रम पावा सगले बिर थारे, अणक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर अवतार, अणक जतन कर आत्म नहीं द्रवा, हर दरगह कहो कैसे गवा, आपस कहो जो भला कहावा, तिस भलाई निकट ना आवा, सर्व की रेन जाका मन होए, कहो नानक ताके निर्मल सोए, जब लग जाना मुझ ते कश होए, तब इस को सुख नाही कोए, जब जाना मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तहारा को बहरी मीत, तब लग नेचल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हों छूटै, सहस खट्टे लख को उठतावै, तृपत न आवै माया पाछा पावै, अणक भोग बिख्या के करा, नह तृपतावा खाप खाप मरा, बिना संतोख नहीं कू राजा, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजा, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी किसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करना हार, इसका हाथ कहाँ विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप या प्रभ सोए, जो किश कीनो सो अपना रंग, सबते दूर सब हुका संग, बूझै देखा करै बिबेक, आप एक आप अनेक, मरण बिनसा आवै न जाए, नानक सद ही रहा समाए, आप उपदेश समझ आप, आपे रचिया सबका साथ, आप कीनो आपन बिस्थार, सबका शुसका ओह करनहार, उसते पिन कहो किश होए, थान थनंतरे कैसोए, अपने चलते आप करनहार, कौथक कर रंग आपार, मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कहन न जाए, सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किनै बखियानी, सच सच सच सब कीना,

मंत एक आस राखो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता मैं सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बांछे मीत सुख सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करें भली करनी सा शोभा भज हर की शरणी अनक पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगा प्रवान मन प्रबुद्ध हर कै नाए दिशावत आ बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जा कै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ पौ बिनसै पूर्ण होए आस भगत भाए आत्म प्रगाश तित कर जाए बसै बनाशी कहो नानक काटी जमफासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इं रतन जन्म का होए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरे तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर सुमैल बिनस जाए हो मैं बिख फैल होय चिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड़ सियाणप सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो बिहार इहां सुख दरगा जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते भय एक अराध प्राशित गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक

अनुसार प्रभु की दृष्टि महासुख होए, हर्ष पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन त्रिवताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुपार परे प्रेम रस रंग, उपदे चाऊ साध कै संग, परे शरण आन सब त्याग, अंतर प्रगाश

आधार जो जो जपै सो होए पनीत भगत बाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीचे अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम कर के गुण गाए अनकराज भोग बड़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दे निवास सर्व सुख नानक प्रगाश श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार शुन समाधि आप आपन किया नानकाया पे ही फिर जा पष्टपदी जाबाकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी आपन शुन समाध तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरक सोग कहो किसै व्यापत जमे अपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेले आप वरतीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक हर गम पार तब नरक सुर्ग कहो कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आपै आप अपनी जोत डरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगामे अपार अवनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को काम विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रवेका तब चतुर गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे अपने आप ही चरजा नानकापन रूप आप ही उपरजा जा निर्मल पुरख पुरख पत होता ता बिन मैल कहो क्या तोता जा निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अभिमान जा स्वरूप केवल जगदीश ता शल शिदर लगत कहो कीस जा जो स्वरूपी जो संग समावे ता किसे भू कवन त्रिवतावे करन करावन करने हार नानक करते का नाहे शुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जा सर्ब कला आपे परवीन ता वेद कतेब कहां कूचीन जब आपन आप उरतारे तो शगन आप शगन कहां बिचारे जय आपने ऊंच आपने आप नेरा ता कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गात जानो आप जा शाल अशेद अपे समाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जा एक है एक एक भगवंता ता कौन है चिंत किस लागे चिंता जय अपने आप पतियारा ता कौन कथे कौन सुनने हारा बोबे अंत उचते उचा नानक आपस को आपे पहुंचा जहां आप रचियो परपंच अकार ते गुण मैं कीनो विस्तार पाप पुन ता पही कहावत को नरक को सुर्ग मंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेले आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है जा अवगत भगत ना है आप जा पसरे पासार संत प्रताप दूं पाका आपे तनी उनकी शोभा उन्हूं बनी आपे कौत करे आनंद चोज आपे रस भोगन निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशुमार यथा अगणत अतुले जो बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक जी जन

अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपै एक आप विस्तार जा तिस भावै ता श्रेष्ठ उपाए अपने भाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जां को प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ अंतर बा

अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नौ निधि अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम शुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज बिसमाद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहिया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म तै जैसी आग्या तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दा दिशे समाए तिस्ते भिन्न नहीं को ठाऊं गुर प्रसाद नानक सुख पाऊं वेद प्राण सिमरत मैं देख ससिर सूर नक्षत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप ये डोला ना कब हूं डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल ना पाइये गुणा अमोल सर्व जोत मैं जा की जोत धार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाश नानक तिन मैं ए विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जिन जाता तिस किए रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करा वनहार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पात तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनकला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतर गज साब जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सरभूत आप वरतारा सर्वनैन आप एक नहारा सगल समगरी जा का तना आपन जा से आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कै मद लिव तो रह जो किश कहना सो आपे कह आग्या आवे आग्या जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते होए सो ना ही बुरा और कहो किने कश करा आप भला करतूत आतनीकी आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत आपन संगराच ताकि गातमित कही न जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब परवान गुरप्रसाद नानक के जान जो जाने तिसदा सुख होया मिलाए ले प्रभ सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का है स्वाऊ जन कै संग चेत आवै नाऊ

शब्द प्यारियो जन्म मरण की टेक मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक वाहिगुरु जी ओ फरीदा गल्ली सो सज्जन वी एक टुंडेंदी नाल हां

कृपा में कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समग्री तुम रह सूतर तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे ताए सब थी हुए सहाय सब थी हुए सहाय दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थी हुए सहाय दसा पातशाहियां की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के निडठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां जी की नेक कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्हां संगा संगणिया ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तानारियां नल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा संग नबाही भाणे नूं मिठा करके मन्निया तना सतकवाना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां जी की ने कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु चेतावे चेत्यावन का सरका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रे आयत देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बोलवाले बोलो जी।

जाके सब किश हाथ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच जुड़मिल बैठी माण योग साध संगत, गुरु महाराज की रहमत दे सदका सजे दरबार दियां हाजरियां आप जी भर रहे सी। धन्यवाद है सत्कारयोग भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी लुधियाने वाले ते उन्हां दे कीर्तनी जथेदार आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन नाल जोड़ रहे सन। तो गुरु चरणों के विच दीवान की संपूर्णता की अरदास, समाप्ति की अरदास हुई। पावन मुख वाक गुरु साहब जी ने बख्शिया है जो बिलावल राग विचों पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह जी की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया मुबारक शब्द है जो गुरु साहब जी ने हुक्मनामे रूप च बख्शिश किया है। बख्शिया पावन उपदेश साड़ी सब की जिंदगी का जीवन का आधार बने, ये गुरु चरणों में अरदास है और ही सजे हुए दवान की संपूर्णता है, समाप्ति है। गुरु प्यारे कड़ा प्रसाद का वरतारा हो रहा, जिन्हां ने प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो, परंत सेवक परिवारों वालों आईया हुई संगत वास्ते गुरु के लंगर तैयार ने। सब ने लंगर पानी जल पानी छक के जाना, संगत की आमद न मुख रखद होया सुखासन की सेवा थोड़ी देर रुकी होएगी, तो कड़ा प्रसाद प्राप्त कर लैन तो परंत गुरु का लंगर सारी संगत ने छक के जाना। धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जी सतनाम वाहिगुरु जीओ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर काल मूर्त जुमी सैभं गुर प्रसाद वाहिगुरु साहब जी गुरपुरे कृपा धारी प्रपूरी लोच हमारी कार्य स्नान गृह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम विस्तरी उठत बैठत हर हर त्याई है अंदन सुकिरत करिय रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड पागी पाए कोड़ जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस्तत करो सदा प्रव्यापन जिन पूरी कल राखी जी जंद सा पह पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन बिनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दड़ाया खोए पाप पहे सब पावन जन नानक सुख कर आया दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा यह बेनती सुन प्रभ मेरे दे नाम करे अपने चेरे अपनी सरण रा प्रभ दाते गुर प्रसाद किन बिले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वसे मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसरना ही पूर्ण गुणतास दर्शन प्यासी दिन सुरात चितवा अंदर नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत सोख होटल गुरु सीवी अहंस सैर सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दो जाए हो ऐसे सिफत किसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तोद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह सिर शाह शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नाम दा विसा सतनाम धन वाहिगुरु जी

सहजे अमर पियो नहाम सहज किन जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया ताके संग विनाशी वसिया सहजे आसन अस्त्र पाया सहजे अनहद शब्द सबसाया सहजे अनहद शब्द बजाया सहजे रुण चुण कार सहाया ताके कर पार मम समाया सहजे जाको परे हो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच तरमा जाके सहज प्या सो जाने नानक दाता के कुरबाने गौड़ी मल्ला पंजवा पर्वत में गरवा तिटरिया पुत्र कलत्र कटांब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बौका परै सर पर गमन कर हंगे बपरै कवन स्थान जो कबू न टरै कवन शब्द जित दुरमत हरै कवन स्थान जो कबू न टराए कवन शब्द दुर्मतरे रहाओ इंदर पुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी ने चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिन सब ताला गिर तार तरण गगन और तारे राव सास पवन पाव निरारे दिन सरण बरत और बेदा बेदा सास बिन से गे बेदा तीर्थ देवा तीर्थ देव देहोरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती डंडौत प्रसादन पोगा खून करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरकर हिंदू पाश पंखी अनक जो जिंदो सगल प्रसादी से पसारा बेन जाए गो सगल कारा सहज सिवत भगत तत गयाना सदा नाने चाई थाना तहां संगत साध गुण रसाय अनबो नगर तहां सद वसाय तय पो परमा सो न चिंता आवन जान मृत न होता तय सदा नंत अकारे भगत वसै की तन आधारे पार ब्रह्म का अंत न पार कौन कराए ताका बेचार कौन जे कृपा करे निचल थान साध संत रे गौड़ी मल्ला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसिवड़े आई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दोदा मार गवावे इसे मार राजो कमावे रहाओ जो इस मारे तिस कहो पो नाहे जो इस मारे सो नाम समाये जो इस मारे तिसकी ती ना बुझाए जो इस मारे सुदरगे सी जाए जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तोवे गति जो इस मारे तिसका आया गणी जो इस मारे सो ने चलता नहीं जो इस मारे सो बड़पागा जो इस मारे सो अंदरन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसके निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सुग्यानी जो इस मारे सहत्या नहीं इस मारी बिन थाए न परै कोट कर्म जाप तप करै इस मारी बिन जन्म न मिटै इस मारी बिन जमते नहीं छूटै इस मारी बिन ज्ञान न होई इस मारी बिन जुड़ न तोई इस मारी बिन सब किसे मैला इस मारी बिन सब किसे जाला जागो पै कृपाल कृपा ने द तिस पई गलासी होई सगल बेसिद गुरदुबदा जाकी है मारी कौ नान सुब्रम बेचारी गौड़ी मल्ला पंजवा हर स्यों जुरै तां सब को मीत हर स्यों जुरै तने चल चीत हर स्यों जुरै तां व्यापे काड़ा हर स्यों जुरै तां होई निस्तारा रे मन मेरे तू हर स्यों जोर काज तुहारे नाही हो रहाओ वडे वडे जो दुनियादार काहू काज नाही गवार हर का दास
नीच कुल सुनाए तिसके संग खिन में उदराए कोट मजन जाके सुन नाम कोट पूज जाके है ध्यान कोट पुन सुन हर की बाणी कोट पदा गुर ते बे जानी मन अपने मैं फिर चेत बिंस जाए माया के हेता हरमनासी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सब भूखा जाके काम न जो है दो जाके काम तेरा वड गमर जाके काम हो तू अमर जाके चाकर को डान नहीं डान जाके चाकर को नहीं डान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूजन लेखा ताकि चाकरी करो बसेखा जाके उन ना ही कहूं बात जाके ऊन ना ही कहूं बात एक आवन एक पाहत जाकी दृष्ट होए सदा निहाल मन मेरे करता की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित गुलाया ते तिलागा सो सेवक नानक जिस पागा गौड़ी मल्ला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीवै साकत नाम बसारी एक निमख जो सिमरन में जिया कोट दिन लख लाख सदा तृतीया रहाओ बिन सिमरन त्रिकर्म ग्रास काग बतन बिठा में वास बिन सिमरन पैकू कर काम सागत बेसुआ पूतन नाम बिन सिमरन जैसे सिंह सितारा बोले कूर सागत मुख करा बिन सिमरन गर दब की न्याय सागत थान पृष्ट फराय बोले कूर सागत मुख करा बिन सिमरन बिन बिन सिमरन पै कूकर काम सागत बेस पुन नाम बिन सिमरन जैसी सितारा बोले कूर सागत मुख कारा बिन सिमरन गर्दव की न्याई सागत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर कह हर काया सागर लोभी बंध न पाया बिन सिमरन है आत्म काती सागत नीच तिस कुल नहीं जाती तिस जिस प्या कृपाल तिस सत संग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी मल्ला पंजवा गुर कै बचन मोह पर मंगा तपाई गुर पूरे मेरी पैर रखाई गुर के बन त्याय मोह नाओ गुर प्रसाद मुँह मिले उठाओ रहाओ गुर कै बचन सुन रसन बखाणी गुर कृपा ते अमृत मेरी बाणी गुर कै बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर कै बचन मिटिया मेरा परम गुर के पेख्यो सब्रम गुर कै बचन कीनू राज जोग गुर कै संग तरिया सब लो गुर कै बचन मेरे कारज सिद्ध गुर कै बचन पाया नौ निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा तिसकी कटिया जम की भाषा गुर कै बचन जागया मेरा कर्म नान गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी मल्ला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी रास रहाओ गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर कै चरण तोए पीवा गुर की रेण निध मजन करो जन्म जन्म की होमे मलहरो ते गुर को चलावो पाखा मां गंदे हाथे राखा तिस गुर कै ग्रिटो वो पानी तिस जिस गुर ते अकल गत जानी तिस गुर कै ग्रह पी सो नीत जिस प्रसाद वैरी सब मीता जिन गुर मोको दीना जियो अपना दास आपे मुल लियो आपे लायो अपना प्यार सदा सदा तिस गो करी नमस्कार कल कलेश पै परम दुख लाथा
कहो नानक मेरा गुर समरा था गौड़ी मल्ला पंजवा। मिल मेरे गोविंद अपना नाम दे, नाम बिना त्रिग त्रिग अस नेराओ। नाम बिना जो पैर हे खाए, जो को कर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या श्रृंगार। नाम विसार करे रस भोगा, सुख सुपने ने तन में रोग। नाम त्याग करे अनकार, बिन जाए झूठे सपाज। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म करतो नरक जावे। हर का नाम जिन मन न रादा, चोर की न्याई जम पर बादा। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पसारा। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। गौड़ी मल्ला पंजवा आद मद जो अंत न बावे। सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले। दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाले, रहाओ बिनसन नाही छोड़ न जाए। जय देखा तरिया समाए, सुंदर सुगर चतुर जी दाता। पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास। प्रीत लाई कर दे नवास, माया सिल काटी गोपाल। कर अपना अगली नौना नयाल, सिमर सिमर काटे सब रोग। चरण ध्यान सर्ब सुख पो, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला। हर अंतर बार संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन। सर्ब सो नाम पद को दीन, रा गौड़ी माज महला पंजवा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद, खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया। से होए भगत जिना कृपारिया, हो वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंड राओ, बहुत हथ पहारिया। मैं तकी और संदा लेओ बारिया। मोहन लाल अनूप सर्ब सदारिया, गुरने में लागो पाए दे दिखारिया। मैं किए मित्रा ने एक बिलहारिया, सब गुण किसी नाए हरपूर भंडारिया। छो दिस जपिए नाओ सुसवारिया, मैं आई और द्वार नाम बिलहारिया। गुरु काढ़ो पूजा पसार मोक पारिया, मैं जीतो जन्म पार भौर न हारिया। मैं पायो सरमदान कत कथारिया, हर दरगे सोभावंत बांध लुडारिया। जन नानक लदा रतन मोल पारिया, गुर सेवा पौजल तरिया। कहो पकारिया गौड़ी मल्ला पंजवा, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। नारायण हर रंग रंगो, जब जेवार एक मंगो रहाओ। ताजा में गुर ज्ञान पजो, मेर संगत तुर कर्म लिखे आओ। जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड़ लगे पच मोयो। मोन नाम सदा रव रहे हो, कोड़ मदे किन गुर मन ले हो। हर संत कर नमो नमो, नौन दे पावे तोल सुखाओ। नैन अवलो वो साध जनो, हृदय गावो नाम निदो। काम करो लो मोह तजो, जन्म दो तेरे आओ। दुख अंधेरा करते मिटे आओ, गुर ज्ञान दड़ियो। गुर ज्ञान दड़ायो दीप बलियो, जिनसे व्यासो पार परे आओ। जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी। हर हर गुर गुर करत परम गए, मेरे मन सब सो पायो रहाओ। बल तो जल तो तौ किया, गुर चंदन से लायो। अज्ञान देरा मिट गया, गुर ज्ञान द पायो। पावक सागर गहरो चर संत नाम तरायो। ना हम कर्म ना धर्म सोच, प्रभ कै पुजा अपायो। ना हम कर्म ना धर्म सोच, प्रभ कै पुजा अपायो। बहु खंडन दुख पन्नो, भगत वशल हर मायो। अनाथे नाथ कृपाल दिन सिमर संतो डायो।
निर्गुण आरे की बेनती दे दर्स हर रायो नानक सरन तुवारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी मल्ला पंजवा रंग संभ क्या के पोगा इन संघ न जानी हौसन जो हो खाटता सगली अवध बिहानी राओ हौसूरा प्रदान हो को नाही मुझे सम्मानी जोवन वंत चार को लीना मन में होए गमानी ज्यो जायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाचे तेनू कौन छपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रटानी अहम बुद्ध सोच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयालपुर कृपा करो नानक दास दसानी जुमला क्यों अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद राह गौड़ी पूर्वी शन महला पहला मुंद रैन देह लड़िया जियो नींद न आवे मुंद रैन देह लड़िया जियो नींद न आवे सातन दुबलिया जियो फिर कह आवे कान थी दुबल कंत खावे केव नैनी देख शिगार मिठ रस भोग पुन सब झूठ के ना लेख है मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी न आवे नानक सातन मिले मलाई बिन पर नींद न आवे मोंदन मानड़िया जियो बिन तनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उतारे ना बिन करवा ना ही पुछो सगी सहेलिया बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे सा सहेलिया सच मन सजन सतोख मेला गुरमति सौ जाने नानक नाम न छोड़े सातन नाम सह समानिया मिल सखी सहे लड़ियो हम पे रावे हा गुर पूछ लिखोगी जियो सब सुनेहा सब साचा गुर दिखाया मनमुखी पहचानिया निकस जा तो रहे अस्तर जाम सच पछाणिया साज की मत सदा नौतर शब्द ने नवेलियो नानक नदरी सह साचा मिलो सही सहेलियो मेरी इश पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुर गाए मंगल प्रेम रैसी मुंद मान हमाहो साजन रहंस दुष्ट व्यापै साज जप सहलाहो कर जोड़ सातन करे बेनती रैन दिन सरस पिनिया नानक पिर तन करे रलिया इस मेरी पुनिया। गौड़ी सन महला पहला सुनना प्रभु जियो एकड़ी बनमाए क्यों ती रह गे ना बिना प्रावे परवाए ताना बाजो रह न सकै बिख रहन कनेरिया न नींद आवे प्रेम पावे सुन बिनंती मेरी आ बाजो प्यारे कोई ना सारे एकलड़ी कुरलाए नानक साहतन मिले पिलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़िए जियो कमन मिलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सहावे शब्द सहावे तां पत पावे दीपक दे उजारे सुन सही सहेली सा सहेली साचे के अनुसारे सतगुर मेली तां पेर रावी बिकसी अमृत बाणी नानक सा तन तां पेर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी घिरिया जियो नी घरिया जियो कूड़ मुठी कुड़ियारे माया मोहनी नी घरिया जियो कूड़ मुठी कुड़ियारे क्यों खोले गल जेवड़िया जियो बिन गुरे हत प्यारे हर पी प्यारे शब्द विचारे तिसी का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तो वै नाम बिना गत कोई न पावै हठ निग्रह बै बाणे नानक सज कर शब्द सजापै दुबदा मैल कह जाने तेरा नाम सच्चा जियो सब सच्चा विचारो तेरा मैल सच्चा जियो नाम सच्चा व्यापारो नाम का व्यापार मीठा भगत लाहा अंदनो
ਤਿਸ ਬਾਜ ਵੱਖਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਵੋ ਖਿਨ ਖਿਨਾਓ। ਪਰਖ ਲੇ ਖਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਚੀ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਾਰ ਰਸ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਲਾ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਤਨ ਬਿਨੋ ਕਰੇ ਜੀਉ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਖਿਨ ਪਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਜੀਉ ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ, ਗੁਰਬਿਨ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀ ਜੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁਣ ਬਜਾਈਐ, ਹਰ ਸਾਚਾ ਸੋਈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਬਿਨ ਸੇਵਿਆਂ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਤਨ ਮਿਲੇ ਮਲਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਮਲਾਏ, ਤਨ ਰਹਿਣ ਸਹੇਲੜੀਐ ਜੀਉ ਹਰ ਸਿਉ ਰਹਿ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਭਾਉ ਕਰੇ ਜੀਉ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਆਂਦਨ ਲਾਗਾ ਪਾਓ, ਸੁਣ ਸਕੀ ਸਹੇਲੀ ਜੀ ਕੀ ਮੇਲੀ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਓ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਨਾਮੇ ਤਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮੇ ਤਰੀ ਪਿਆਰੋ, ਨਾਨਕ ਅਮਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਲਾਰੋ, ਤਨ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਮੁਠੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਰੇ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਦੁੱਤਰ ਤਾਰੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੁਆਈ ਕੂੜ ਵਿਗੁੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਤੀ, ਸਾਤਨ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ, ਆਂਦੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਅਮਲ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਮਲਾਏ, ਤਾਂ ਮਿਲੀਏ ਹਰ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ਹਰ ਬਿਨ ਕਮਣ ਮਲਾਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਜੀਉ ਕੌਣ ਪਰਮ ਜਗਾਏ, ਗੁਰ ਪਰਮ ਜਗਾਇ ਮਿਲੀਏ ਮਾਏ, ਤਾਂ ਸਾ ਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਗ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਾਮਣ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੀ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਮਾਣੀ ਜੀਓ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਫਿਰ ਬਿਨ ਨੀਂ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਨਾ ਸੁਹਾਈ, ਕਾਪੜ ਤਨ ਸਹਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵੇ, ਗੁਰਮਤੀ ਚਿਤ ਲਾਈਐ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਅੰਕ ਸਮਾਈਐ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਵੀ, ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਨਾ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਕਹੇ ਗੁਣ ਸਾਰੇ, ਸਾਤ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ ਆਪਣੇ ਨਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਐਨ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਜੀਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਆਉਣੇ ਮਾਰੇ, ਇੰਦ ਬਹਿ ਮਿਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਤ ਅਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੀ, ਸਾਚੇ ਨਾਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਹੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਈਏ ਦੁਬਦਾ ਮਾਰ ਨਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਹਰ ਵਰ ਪਾਇਆ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਨਵਾਰੇ, ਕਾਮਣ ਪਿਰੋਂ ਭੁੱਲੀ ਜੀਓ ਮਾਇਆ ਮੋਤ ਪਿਆਰੇ, ਝੂਠ ਝੂਠੀ ਲੱਗ ਜੀਓ ਲੱਗੀ ਜੀਓ ਕੂੜ ਮੁੱਠੀ ਕੁੜਿਆਰੇ, ਕੂੜ ਨਵਾਰੇ ਗੁਰਮਾ ਸਾਰੇ ਜੂਏ ਜਨਮ ਨਹਾਰੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵੇ ਸਾਸ ਮਾ ਵਿੱਚ ਹੁਮ ਹਿਮਾਰੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਏ ਐਸਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ ਜੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰੋ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਮਾਣੀ, ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਪਾਵੇ ਅੰਨ ਨ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ, ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੋ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇਂ ਮਲਾਈਐ, ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਸੋ ਦਾਤਾ ਆ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਆਏ, ਨਾਨਕ ਅਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਪਿਰ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਮਣ ਹਰ ਰਸ ਬੇਦੀ ਜੀਓ ਹਰ ਕੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਮਨ ਮੋਹ ਮੋਲੀਆ ਜੀਓ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ, ਦੁਬਦਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਕਾਮਣ ਵਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੂੜ ਕੁਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਗਲ ਥਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਿਤ ਸਹਿ ਤੁਨ ਉਪਜਾਏ, ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰੇ ਪਿਆਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਪਾਇਆ ਜੀਓ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਏ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਿਣ ਸੁਖ ਸੁੱਤੀ ਜੀਓ ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰੇ, ਅੰਤਰ ਉਰਤਾਰੇ ਮਿਲੀਏ ਪਿਆਰੇ,
अंधे दो नवारे अंतर मैल पिलावे कामन गुरमति विचारे अमृत ना पिया दे राती दुबदा मार नवारे नानक सच मिली सुहागण गुर के हित अपारे आवो दया करे जियो प्रीत मत प्यारे जोग जो एको सच्चा सोई बुझे गुर बिचारे मन मोह काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मान मोह थाओ न पाए बिन गुर आत प्यारे मोदयानी पोली निगुणिया जियो फिर अगम पारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शन हारा अवगुण बख्शन हारा कामन कंत प्यारा कांड कड़ रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है सतगुर बूझ बजाई सदा आनंद रहे दिन राती अंदर लिवलाई नानक सहज हर पाया साधन आनंद पाई गौड़ी मल्ला ते जा माया सा सबल वरते जियो कर कर दुतर तरिया जाए राम नानक बोथा जियो शब्द के विट पाए शब्द के विट पाए राव गवाए लंगाए बिन इन बे दुतर तरिया गौरमा बा प्राप्त होवे जीव त्या मरी है खिन मर राम नाम किलवे काट पै पवे शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पै मधूरा स्त्री पुर काम व्यापे जियो राम नाम की बेनी जानी माध पिता सुध पाई खरे प्यारे जो डूमुए बिन पानी डूमुए बिन पानी गानी जानी होमे ता संसारे जो आया सो सब को जासी उबरे गुर विचारे गुर मोवे राम नाम वखाणे आप तरे कुल तारे नानक नाम वसे कटंतर गुरम मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ पर सची जियो राम नाम वपारा राम नाम वपारा गुम पारा गुरमती तन पाई है सेवा सुत पवते साची विचो आप गवाई है हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंध है सतगुर मार्ग पाए नानक गुरम शब्द सुहावे अंधे हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे सब सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जो भगत प्यारे जो जो भगत प्यारे आप सवारे आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदे नाम वसाए नानक सद बलहारी सच्चे विटो आपे करे कराए आपे गुणदाता अवगुण काटे हिरदे नाम वसाए नानक सद बलहारी सच्चे विटो आपे करे कराए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले तो सजी दीवाना दासियों परियां ने नेतनम साहब बाणी के पाठ श्रवण किए ने गुरु कृपा करे सब न चढ़दी गला बख्शन सुहावन समा है आसा की वार दे कीर्तन का भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी वीर साहब वाला जथा श्रवण कराने आसा की वार दे कीर्तन आओ बड़े प्यार श्रवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: हरि कृत तपस्या तरंतर जाय लखिय रहाउ जात में जो जोत में जाता का कला भरपूर रहे आओ तू सच्चा सब शिव स्वर्ग की तिसो पार पायाओ ओ नानक ते की बात जो कुछ करना सो कर रहा महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण कतरी।

तुमरे कृपा में सोख कनेरे कोई न जाने ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरे तुम ते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जी एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री बहुत जी सहाय वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवें प्रथम अगौती सिमरकै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कारण उन आवे ताए सब ताई ही सहाय दसवें पातशाह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ताई ही सहाय दसों पातशाहियों की जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पितर पाठ दे दर दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा प्यारियां चौं सब जादियां चालियां मुक्तियां अठियां जपियां तपियां शाही सिंघां सिंघणियां जिन्हां नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिन्हां गुरमां प्यारियां सच्चियारियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्म सीध दित्ते बंद बंद कटाए चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चरवाए उबलदियां देगां विच उबाले के खोपरियां लुहाईयां गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल ले कुर्बानियां कीतियां तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्निया असहे ते कहवा सहार दे शीदो सिकिर के सास वास संग नवाई तरमनी आरिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां की कमाई का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे जी का ध्यान तर खालसे सब बोलो जी वाहे प्रथम खालसे जी की अरदास है जी सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तर चरया देते फते बिरद की पैज पंथ के जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले खालसे से बोलो जी वाहे सिखा नू सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसे जी के बोल बाले खालसे सब बोलो जी वाह सिखां दा मन नीवा मात उची मादे राखे आप अकाल पुरख अंतर जामे गुरु गरीब निवास जी पातशाह पंदे सदा सहाज दे तार पिता जी।

बोले सौ निहाल सात श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾ ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਮਤ ਕਹੋ ਧਰੋ ਗੁਮਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤ ਆਵੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉਂ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਹੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨ ਹੋਵੀ ਭੰਗ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਹਰ ਰੰਗ ਮਜੀਠ ਰੰਗ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਰੰਗ ਚਾੜਿਆ ਫਿਰ ਬੌੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਭੰਗ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਉਪਦੇਸਿਆ ਹਰ ਪੇਟਿਆ ਰਾਉ ਨਿਸੰਗ ਰਾਉ ਮੁੰਦ ਐਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਫਿਰ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਅੰਗ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨ ਆਇਓ ਮਨ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਸਹਿਲੰਗ ਹਮ ਮੈਲ ਪਰੇ ਦੋ ਚਾਰੀਆ ਹਰ ਰਾਖੋ ਅੰਗੀ ਅੰਗ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਵਲਾਇਆ ਸਭ ਲਾਤੇ ਕਿਲ ਵੇਖ ਪੰਗ ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਹਰ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੋ ਸੰਗ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰੰਗ ਪਾਇਆ जन नानक मन तन रंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सकार जो सत्संग जी, सतगुरु जी पार बख्श रहमत कृपा हुई है। अमृत वेले सजे दीवाना दियां हासियां भरिया ने, नेतनेम अनुसार बाणी दे पाठ उपरंत आसकी वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने, रास प्राप्त कीता सरबत दे भले लई। आप सरबत संगतां दी चढ़दी कला लई गुरु चरणां विच अरदास होईए। सतगुर ने पवित्र हुकम नामे बख्शे जो आप श्रवण कीते ने, गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दी कला बख्शन। बने प्रोग्राम सारे स्पाम मुखवाद की कथा विचार भाई सपाई गुरशरण सिंह जी सरवण कराउणगे। आओ बड़े प्यार नाल सरवण करो, जिवें आप संगतां दे सहयोग दे नाल आप दी कृपा दा सदका आप ने जो सेवा कर रहे जे उन्हों मुख रखदे होए, आने वाले समय लई नवी बिल्डिंग जो गुरद्वारा साहब दी उहदी उसारी आरंभ कीती गई है, नींह पत्थर रखा गया थोड़े समय नूं, यह उसारी आरंभ हो जानी है। आप बहुत सहयोग बख्श दे जे, बड़ी कृपा है तुहाडे जी आया नूं सिर मत्थे तुहाडी सेवा और तुहाडे सहयोग दे नाल ही यह अस्थान ते बख्शिश होई है कि इस अस्थान दे विचों आप संगतां दे सहयोग दे नाल दूजा स्थान बनना, यह भी मायने रखदा क्योंकि प्रबंधक वीरां दी सोच संगतां दी सोच आने वाले समय नूं मुख रखदिआं होइआं, क्योंकि आने वाला समा जिहड़ा है वह टेक्नोलॉजी का समय और बच्चे भी आने वाले समय में वो चीज़ मंगते हैं कि उन्होंने जी सोहनी लगे, तो आप आने वाली जनरेशन वास्ते एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। आस है कि आप जी ये पसंद आया होगा, वद तो वद शेयर करो इस बिल्डिंग की जी आप मूवी फोटो ले लो, और नाल नाल ये भी आप जी ने बेनती कि ये आप अपना दसवंध कढ के जरूर इस वे सहयोग बख्शो, कां कि एक एक बूंद नाल बाल्टी भर जाती है, थोड़ा थोड़ा दिता होया गुरम प्यारे ये सेवा ताड़ी गुरु दे लेखे लगनी है, तो आने वाली पीढ़ियाँ तुहानू इत्थे नांद लैके याद करया करनगियां कि साडिया बजुर्गां ने साडिया संगतां ने सानू से बख्शिशां कीतियां ने। गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला बख्शन, गुरु चढ़दी कला बख्शे। इस तरह गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नाल जुड़े रहो जी। आओ सरवण करिए अज दे मुख वाक दी कथा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम।

खाना पीना हसना बादू जब लग गुरदे नया वे याद तो परवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किश लीजी लीजे रहाऊ तो परवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किश लीजी लीजे रहाऊ मन की मत मता गल मता जो किश बोलिए सब खतू खता क्या मूले कीचे अरदास पाप पुन दुए साखी पास जैसा तू करें तैसा को हुए तुझ मिन दूजा नाही कोई जे ही तू मत दे ते ही को पावे

हो मर्दानिया सुन बात हमारी, नेड़े हो मर्दानिया सुन बात हमारी, नेड़े हो मर्दानिया।